0: एक खोखला वृत्त एक घन चिन्ह तीन ऊर्ध्वाधर लहरदार रेखाएं एक खोखला वर्ग और एक खोखला पांच बिंदु वाला तारा एक खोखला वृत्त एक घन चिन्ह तीन ऊर्ध्वाधर लहरदार रेखाएं एक खोखला वर्ग और एक खोखला पांच बिंदु वाला तारा
1: लहरदार रेखाएं एक खोखला वर्ग और एक